0: जी सामिन, आप जो गीत सुन रहे थे उसका अनुमान था कोयो इनो सुकिनो योनी, और अब घड़ी की सुइयां मुझे कह रही हैं कि इजाजत लेने का वक्त आ गया।
1: जाने से पहले बताते चलें कि सामीन, आप हमारे होम पेज nhk.jp/urdu के जरिए हमारी खबरें और प्रोग्राम सुनिए और अपनी आरा भी रवाना कीजिए, हम मुंतजिर हैं।
0: होम पेज है nhk.jp/urdu। इसी होम पेज के जरिए आप हमें तहरीरी पैगाम भिजवाने के साथ साथ ऑडियो या वीडियो पैगाम भी भिजवा सकते हैं। और अब अपने मेजबानों वसीमा आबिद, खलील शिराजी, सोफिया जमशेद को इजाजत दीजिए।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे।

हमारी प्रसारण सूची और ताज़ा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कमानो का कोनिच्चिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिच्चिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब और हिंदी भाषी इन्फ्लुएंसर मायो जी से मुलाकात की दूसरी कड़ी।
0: कमाई जी, देखिए टोक्यो में चर्चा हो रही है मौसम से जुड़े एक नए रिकॉर्ड की।
1: मैं समझ गई, आप बात कर रही हैं लगातार टोक्यो में बारिश होने की।
0: हाँ बिल्कुल।
1: इसने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 33 दिनों का था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ऐसी बारिश में पता ही नहीं चला कि सितंबर कहाँ चला गया। तूफान, बारिश, बाढ़, आपदाएं, बस इन्हीं चीजों पे नजर रखते रहे और आ गया अक्टूबर।
1: सही कहा आपने, हमने समाचारों में भी इसके बारे में बताया था
0: जी।
1: लेकिन एक बार फिर एहसास हुआ कि जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन में कितना असर डाल रहा है।
0: वो तो है। और सबसे ज्यादा परेशानी हुई कपड़े सुखाने में। घरों के अंदर भी नमी सी बनी हुई थी और सुना है कि कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी।
1: जी हाँ, और देखिए सूरज की रोशनी एक टॉनिक का काम करती है
0: जी।
1: हमारे अंदर सकारात्मक भावनाओं को जगाने में उसकी बहुत जरूरत है। विटामिन डी भी कम होने लगे तो स्वास्थ्य पर असर पड़ना स्वाभाविक है।
0: हाँ, और इतने दिनों की बारिश के बाद जब 2-3 दिन पहले धूप निकली तो पाया कि मौसम बिल्कुल बदल चुका था। सुबह हल्की हल्की ठंड का एहसास हुआ और हवा की खुशबू बिल्कुल ऐसी थी ना जैसे कि दशहरे के समय भारत में होती है ना।
1: चलिए उम्मीद करते हैं मौसम अब खुशगवार ही बना रहेगा
0: जी।
1: वैसे श्रोताओं के पत्रों से भी मन खुश हो जाता है, तो आइए पत्रों का रुख करते हैं।
0: तो आपने बिल्कुल सही कहा। और बताइए ये पहला पत्र किसका है?
1: जी हाँ, ये आया है किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी का। लिखते हैं 27 सितंबर को साप्ताहिक कार्यक्रम चरी के देश से के अंतर्गत चुलबुली और लोकप्रिय जापानी यूट्यूबर मायोसान से एक बार फिर मुलाकात कर सचमुच आनंद आ गया। हिंदी बोलने का उनका आत्मीय अंदाज, लहजा और सहज गति तीनों ही काबिले तारीफ है। हालांकि मायो जापान से हुई ये भेंटवार्ता हम पहले भी सुन चुके हैं, फिर भी एक निश्चित अंतराल के बाद इसे दोबारा सुनना सुखद अनुभव रहा। हिंदी भाषा और भारत के प्रति मायोसान की समझ, आत्मीयता और लगाव ने तो हमें उनका कायल ही बना दिया है।
0: सुरेश जी, सच में मायो जी की बातें इतनी प्यारी होती हैं कि उन्हें जितना भी सुना जाए मन नहीं भरता। बहुत बढ़िया विचारों की धनी है और खासकर उनकी नजर से भारत को देखने से नए नए दृष्टिकोण सामने आते हैं।
1: और सुरेश जी आगे लिखते हैं, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा, यदि जापान चरी का देश है तो भारत किस चीज का देश है? सच कहा जाए तो भारत अपनी अत्यंत विविधतापूर्ण संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक वैभव के कारण किसी एक चीज से परिभाषित होने वाला देश नहीं है। इसलिए जापान की तरह भारत के लिए किसी एक प्रतीक की तुलना करना आसान नहीं। फिर भी यदि चेरी जापान की पहचान है तो कमल भारत की पहचान अवश्य कहा जा सकता है, क्योंकि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल भारतीय संस्कृति, सौंदर्य और आध्यात्मिक परंपरा में भी विशेष स्थान रखता है।
0: सुरेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर चेरी जापान की पहचान है तो भारत की पहचान कमल का फूल हो सकता है। वैसे कमल तो जापान में भी सदियों पहले से उगाया गया है और बौद्ध धर्म में भी तो इसका बहुत बड़ा महत्व है
1: जी।
0: इस प्रकार ये फूल भी भारत और जापान के बीच एक कड़ी है। तो कमाईनी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है फूल?
1: हाँ, अगर खुशबू के हिसाब से सोचें तो गुलाब के फूल।
0: हाँ, गुलाब के फूल। हाँ,
1: और रंग के हिसाब से गेंदे के फूल।
0: अरे हाँ, गेंदे तो हर जगह हर शुभ अवसर पर गेंदे की जो है एंट्री हो जाती है ना।
1: हालांकि जैसा आपने कहा ये भी सच है कि भारत इतना विशाल देश है कि किसी एक क्षेत्र या किसी एक फूल को इसकी पहचान बनाना मुश्किल है।
0: बिल्कुल सही कहा। आइए अब चलते हैं अगले पत्र की ओर, जो आया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से RS विजय कुमार जी का।
1: क्या लिखते हैं?
0: कमरी जी, देखिए हाल में नेपाल चीन सीमा पर जो बाढ़ आई उसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और जो लोग बच गए हैं उनके लिए आगे जिंदगी जीना कठिन हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। तो इसी सिलसिले में नेपाल के श्री ग्याल्पो पर एक समाचार के संबंध में विजय कुमार जी ने लिखा है कि इस प्रकार की दुखद एवं अत्यंत संवेदनशील घटना ग्याल्पो जी के साथ ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र के अधिकांश परिवारजनों के साथ घटी है। पल भर में सारा का सारा गांव एवं इलाके उग्र रूप धारण किए हुए बाढ़ के प्रकोप से तबाह हो गए। इस प्रकार की अप्रिय घटना ने सचमुच हृदय को झंझोर कर रख दिया। जब प्रकृति का तांडव होता है तब इंसान बेबस और लाचार होकर रह जाता है। इससे हमें यही सबक मिलता है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, उसके सौंदर्य को बस निहारना चाहिए, ना कि उसे छेड़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने परिवारजनों को खोने की पीड़ा सहते हुए भी ग्याल्पो जी अपने विदेशी जापानी मेहमानों की रक्षा में जिस प्रकार से संलग्न रहे वे सचमुच बधाई के पात्र हैं। उनकी मेहमान नवाजी के लिए सत सत प्रणाम।
1: सच में ग्याल्पो जी की कहानी बेहद दर्दनाक रही। उनकी बेटी को छोड़कर पूरा परिवार लापता है। उन्होंने मान लिया है कि वे अब शायद इस दुनिया में नहीं है। सोचकर ही शरीर कांप उठता है। लेकिन वाकई सलाम है उनको, क्योंकि इस कठिन समय में भी उन्होंने अपने सहकर्मियों को सही सलामत काठमांडू पहुंचाया, अपने कर्म और कर्तव्य से नहीं हिले वो।
0: जी हाँ, और हमारी अब यही दुआ है कि जो लोग बच गए हैं उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए और वे आगे खुशहाल जीवन बिताएं और इस तरह की आपदा उनके जीवन में दोबारा कभी ना आए।
1: जी बिल्कुल। अब देखिए, नागोया एशियाई खेलों में प्रबंधन को लेकर कई कमियां सामने आई हैं और इस खबर पर अरुण कुमार जैन जी ने लिखा है कि नए खेल गांवों के निर्माण की बजाय कंटेनर होटलों को रखना एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि ऐसे गांव बाद में बेकार हो जाते हैं और पहले से ही शहरी क्षेत्रों में जमीन की कमी के कारण समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
0: जी,
1: खेलों के दौरान कुछ समस्याओं का आना आम बात है, लेकिन उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन खिलाड़ियों के मुकाबलों से पहले उचित और सुगम परिवहन व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़ी समस्याएं अनावश्यक तनाव का कारण बन सकती हैं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं।
0: अरुण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खिलाड़ियों के लिए होने वाले आयोजन में अगर उन्हीं को प्राथमिकता न दी जाए और उन्हीं का ख्याल न रखा जाए तो ये अत्यंत खेदजनक बात है।
1: जी,
0: नागोया खेलों में खामियों को लेकर विदेशों में भी काफी चर्चा हुई। सोशल मीडिया में भी खिलाड़ियों और संबंधित लोगों ने आवाज उठाई।
1: उम्मीद करते हैं कि इससे सीख लेकर भविष्य में सुधार हो, ताकि खिलाड़ी चिंता मुक्त होकर केवल अपने प्रदर्शन पर ध्यान दे सकें और बाकी चीजों में समय जाया ना हो। वैसे आज इन खेलों का समापन समारोह जोर शोर से हुआ। भारत का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, लेकिन चीन ने जो कमाल दिखाया उसके आगे सब फेल थे।
0: हाँ, उसकी बराबरी करना शायद किसी भी देश के लिए मुश्किल है, लेकिन प्रेरणा तो मिली होगी सबको।
1: जी हाँ, अब देखिए एक अलग तरह के खेल पर फेसबुक पर परालिया जीवराज जी ने टिप्पणी की है। जापान में खेती में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए धान की कटाई के बाद दलदले खेत में रग्बी मैच खेले गए। इस लघु वीडियो पर उन्होंने लिखा है, हमें बुलाओ, हम खेती करेंगे, हम हैं इंडिया वाले।
0: ये भी खूब रहे। अच्छा कमाईनी जी, आजकल फेसबुक पर हमने एक साप्ताहिक क्विज शुरू किया है ना?
1: हाँ हाँ, इस क्विज में किसी चीज का चित्र होता है और आपको बताना होता है कि उसे जापानी में क्या कहते हैं। हिरागाना में एक अक्षर लिखा होता है और आपको बाकी अक्षर बताने होते हैं।
0: जैसे पिछले सप्ताह सुशी का चित्र था और बताना था कि इसे जापानी में क्या कहते हैं। साथ ही सुशी का सु अक्षर लिखा हुआ था और आपको शी अक्षर बूझकर सुशी शब्द बनाना था।
1: इस क्विज के माध्यम से आप जापानी शब्द सीख सकते हैं और हिरागाना लिपि में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस क्विज को पूछकर उसका जवाब भी लिखेंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: वायला जी, पिछले सप्ताह से हम श्रोताओं को हिंदी भाषी जापानी मायोजी से भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण कर रहे हैं। उस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
2: आप संजय लीला बंसाली जी से मिली हैं, आपका अनुभव कैसा रहा उनसे?
3: हाँ, एक बार वो गणेश चतुर्थी के दिन संजय लीला बंसाली जी एक मतलब घर पे मना रहे थे, फेस्टिवल, और उसी समय, ये लंबी कहानी है लेकिन उससे पहले मैंने पिंगा डांस किया था सबसे पहले, और एक पद्मावत के घूमर डांस है, उनके कोरियोग्राफर है ज्योतिरी तोमर जी, उन्होंने मेरे पिंगा डांस देखा और उन्होंने संजय लीला भंसाली जी को मेरा डांस दिखाया भी, और संजय लीला भंसाली जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छे से डांस करती हैं, और उसी शब्द उसी बातचीत को मुझे पहुंचाने के लिए ज्योति जी ने मुझे मैसेज किया था, ईमेल किया था, और उसी समय ज्योति जी ने मुझे पूछा कि घूमर डांस भी सीखना चाहती हैं, तो ऑफकोर्स मैंने हाँ कर दिया और हमने सीखा, घूमर डांस वीडियो बनाया था, वो सीखना ये सब ऑनलाइन पे हुआ था क्योंकि कोविड के टाइम था, और उसके बाद ज्योति जी से मिली मैं, तो उसी समय से हमेशा जब मुंबई में जाती हूँ तभी तो उनके घर में ही रहती हूँ, होम स्टे करती हूँ, तो एक होस्ट माजा बन गई हैं, और उसी ज्योति जी ने वो जो क्या बोलते हैं इवेंट कहूँगी या मतलब उनके घर में गणेश चतुर्थी में जाने वाली थी, इसलिए उसी समय मुझे भी लेकर गई, तो ऐसे करके उनके घर गई मैं, और जाने के बाद कुछ तो बातचीत हुई है, लेकिन मैं तो बहुत ही डर गई थी, संजय लीला लीला भंसाली जी बहुत गंभीरता के साथ कुछ बोलते हैं हमेशा हाँ तो अच्छी बातचीत हुई लेकिन मैं तो बहुत डर गई थी, और साथ में फोटो भी खींचा, वो बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन इतने मतलब खुल के तो बातें नहीं कर पाई मैं तो बहुत नर्वस हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा मतलब अच्छा अनुभव था।
2: उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपकी उनके साथ मुलाकात हो।
3: हाँ।
2: आपने कहा कि आपकी फिल्म जो फेवरेट फिल्म है गोलियों की रासलीला
3: रामलीला, हाँ।
2: उसका कोई डायलॉग पसंद का कोई डायलॉग है या कोई और फिल्म का भी चलेगा जो आपका सबसे फेवरेट डायलॉग है?
3: ये भी बहुत मुश्किल सवाल है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। ये थोड़ा सा उधर बदल गया, वो जो हर औरत का ख्वाब होता है पहले होना चाहिए था और चलो ठीक है। हाँ ओके, ये बहुत
2: बहुत बढ़िया। हाँ। अब ये बताइए कि आपने अपनी वीडियो YouTube वीडियो में कहा कि भारतीय लोगों और संस्कृति को समझने के लिए अंग्रेजी तो काफी नहीं है, हालांकि आप कह रही हैं कि शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता भारत में।
3: हाँ।
2: लेकिन आपने कहा ये भी कहा कि हिंदी आना जरूरी है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदी जरूरी है और सिर्फ अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा? हालांकि अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं, पर ऐसा कौन सा पल था कि जो आपको लगा कि मुझे हिंदी आना जरूरी है?
3: जी मुझे लगता है जब मैं हिंदी बोलती हूँ तब भारतीय लोग मुझको विदेशी के रूप में स्वीकार नहीं करते, अपने रूप में स्वीकार करते हैं। ये बात मुझे धीरे धीरे पता चला कि इंग्लिश में भी बातें तो कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन लगता है कि हम तो अलग देश से हैं और कम्युनिकेट बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मैं हिंदी बोलती हूँ तब शायद भारतीय लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये लड़की भारत के बारे में जानते हैं और रुचि भी रखती हैं, इसलिए अपने जैसे स्वीकार करते हैं। हाँ, और जब ऐसे हैं तभी तो और ज्यादा बातें कर सकते हैं, जैसे कि अभी तो मैंने कहा कि होस्ट फैमिली, एक होस्ट फैमिली है मुझे स्वीकार करते हैं, लेकिन शायद अगर मैं मुझे हिंदी नहीं आती तो उतना तक मतलब संबंध
2: एक अपनापन नहीं बन पाता,
3: अपनापन नहीं, हाँ हाँ हाँ वो
2: और दूरी बनी रहती।
3: हाँ तो हाँ ऐसा है मुझे लगता है। हाँ।
2: तो मतलब हिंदी आने से अपनापन बढ़ जाता है। हाँ, लोगों के
3: जी,
2: बीच
3: जी,
2: में
3: जी।
2: ऐसा एक कौन सा पल या ऐसा कोई वाकया जब आपको लगे अच्छा हुआ मुझे हिंदी आती है जान बच गई?
3: वो तो शायद यूट्यूब का कैरियर होगा कि मैं अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो ऑफकोर्स यूट्यूब नहीं करती, और अभी तो यूट्यूब एक मेरा मेरी जिंदगी बन गई है, तो हाँ वो ही तो बात है।
2: आपने YouTube की बात की और पिछले 3-4 साल से मैं देख रही हूँ कि आपकी हिंदी बेहतर से बेहतर होती जा रही है, बहुत ही बढ़िया होती जा रही है. तो अब भी क्या आपके ऐसे कोई गुरु हैं जो आपका निरंतर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि भाषा ऐसी चीज है जिसे हमेशा ही सीखना होगा, कभी बंद नहीं हो सकता. तो ऐसे कोई गुरु हैं?
3: कुछ गुरुज हैं, पर सबसे ज्यादा वो होस्ट मदर जो हैं, उनके पिताजी हिंदी की प्रोफेसर थे, इसलिए होस्ट मदर को भी बहुत अच्छे से शुद्ध हिंदी आती है. तो और वो हमेशा मेरी हिंदी सुधारती भी, तो वो मेरी गुरु हैं. वैसे मेरी हिंदी ठीक नहीं है, मतलब ठीक तो है पर परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, पर बातें तो कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं. तो ऐसे में लोग मेरी हिंदी को अगर गलती है तो फिर भी सुधारते नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को समझ सकते हैं. लेकिन वो ही गुरु जो है सुधारती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है.
2: अच्छा मायोसान, आपकी हिंदी नहीं, आपका नृत्य भी बहुत बढ़िया है.
3: और
2: मैंने सुना कि बचपन में आपने बेले नृत्य सीखा था.
3: जी.
2: और आपके वीडियो देखे हैं हिंदी फिल्मों के गानों पर, आप बहुत ही बढ़िया थिरकती हैं. तो पढ़ाई और डांस ये एक साथ कैसे किया?
3: असल में एक साथ शुरू नहीं हुआ था. पहले मैंने बाले डांस शुरू किया था जब मैं 3 साल की थी, और हाई स्कूल तक यानी कि 15-16 साल तक मैं क्लासिकल बाले डांस ही करती रहती थी. पढ़ाई तो ज्यादा नहीं करती थी उसी समय, लेकिन उसके बाद कॉलेज जाने के लिए बहुत पढ़ाई की है. और विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते हाँ उसी समय भी डांस नहीं करती थी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद यूट्यूब शुरू करने के बाद ज्यादा डांस करने लगी. ऑफ कोर्स क्लासिकल बाले के बेसिक्स हैं, तो कोई भी डांस भी कुछ तो मतलब काम आती है और कुछ तो कर सकती हूँ. और आजकल तो ओडिसी डांस भी शुरू की है. ओडिसी डांस मैंने देखा जब मैं कॉलेज में थी, उसी समय ओनो मासाको जी करके एक बहुत बढ़िया ओडिसी डांसर है, वो बहुत सुंदर नाचते हैं. उनकी वीडियो देखा और मुझे सीखनी थी ओडिसी, पर उसी समय कोई स्टूडियो वगैरह नहीं था, इसलिए उसी समय तो मैंने छोड़ दिया. पर कोविड के टाइम ऑनलाइन पे उसी ओनो मासाको जी ने डांस सिखाना शुरू किया था, मैं भी सीखने लगी. और आजकल तो हाँ ओडिसी भी सीखती हूँ या बॉलीवुड डांस भी देखते देखते सीखती हूँ, बहुत मजा आता है.
2: तो ओडिसी, खास तौर से ओडिसी ही पसंद को, आपने दूसरे कोई टीचर ढूंढ भरतनाट्यम या ऐसे कोई डांस फॉर्म नहीं सोचा?
3: सोचा तो है, लेकिन ओडिसी सबसे बढ़िया लगा मुझे देखकर, बहुत सुंदर लगा. वैसे मैं पहले तो क्लासिकल डांस बाले डांस करती थी, इसलिए कुछ सॉफ्ट वाला या एलिगेंट वाला डांस मुझे अच्छा लगता है. भरतनाट्यम भी बहुत सुंदर है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब वो जो क्या बोलूंगी, थोड़ा सा बीट अलग है. ओडिसी का जो सॉफ्ट डांस फॉर्म है बाले में कुछ मिलता जुलता है, इसलिए मुझे लगता है ओडिसी मेरी पसंदीदा डांस है.
1: दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भेंट वार्ता पसंद आई होगी. अगले सप्ताह लेकर आएंगे इसकी तीसरी और अंतिम कड़ी, जरूर सुनिएगा.
0: जी हाँ, और दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात. तब तक अनुमति दे वायला कवानों को
1: और कामायनी सिंह को
0: सायोनारा, नमस्कार.